जगतो सिया जगनमयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते महामोहा।

0: শুনলেন নজরুল গীতি, শিল্পী অনুসুয়া মুখোপাধ্যায়। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি।
1: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
2: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
1: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे

जगदोष्टिया जगन्महि महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहाज भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च।

0: बेटा सागेन
1: चेत
0: बेटा हाना बांबड़े पड़ा शिव मंदिर रे सधु बेस्ते आम बाबा ही एकना
1: बाड़ाई आम खोन लाहारिन बाड़ाया उनिया तीरे पिया सिकदाग आर शेरमा सोरेन खोदा मेना
0: चलो लागे गुइया
1: बांगा
0: चिदा बेटा
1: उनी ओड़ा हेज लेन खान होड़ को बाड़ा न्याम गोदा आर इना चक्री चाबा तिन्या
0: मेनखान उनी दो आम बाबा कनाय
1: ताहे कनाय मि दिन नितो दो बांग कनाय इन बाबा दोय गोज आकना उनी दो मिटंग साधु इन बाबा दो हिड़ी ले दिया हिड़ी उतर काय में
0: ए बेटा उनका दो बाको लया हाड़ा मोड़ तिने ए कष्टआ हेज आकना जखन चलो लांगा गुइया
1: न दरद दो आलम उदुगा दड़ लिया चिदा
0: इन होते ते होय बेटा इन होते ते
1: आलम रागा

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अनुष्ठान निवेदन करलो भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: তারা চিরকালই আমাদের কাছে নমস্য। এবং আজকে আপনার কাছ থেকে আপনার এই বেতার জীবনের এবং বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যা শুনলাম তা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের একটা নতুন পথ দেখাতে পারে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
1: শুনলেন বেতার সম্প্রচার এবং আকাশবাণী কলকাতার প্রভাত প্রতিম ব্যক্তি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রদীপ মিত্র। অনুষ্ঠানটি আকাশবাণী সংগ্রহালয় থেকে নিয়ে বাজানো হলো। মুখোমুখি আজ এখানেই শেষ করছি।
2: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
3: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
2: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
3: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
2: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
3: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
4: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বিশেষ উপস্থাপনা দুর্গা মায়ের ঘরে ফেরা।
5: 10 অক্টোবর রেড রোডে রোড শো ও নেতাজির ছবিতে মাল্যদান এবং ইডেন গার্ডেন্সে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 3D প্রজেকশন, ড্রোন শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী।
4: 10 থেকে 15 অক্টোবর দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, বিষ্ণুপুর, কোচবিহার, মালদা, বহরমপুর এবং দীঘায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
5: 10 থেকে 26 অক্টোবর প্রিন্সেপ ঘাট, বাবুঘাট, কুমারটুলিঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক ও রামকৃষ্ণপুর ঘাটে দেখুন নদীর তীরে এক অপূর্ব সমারোহ।
4: দুর্গা মায়ের আশীর্বাদে আনন্দে ভরে উঠুক বিশ্ব।
1: আকাশবাণী কলকাতা শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান।
6: আকাশবাণী হে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত কে কার্যক্রম মে আপকা স্বাগত হে। আজ আপ ইস কার্যক্রম মে কর্ণাটিক শৈলী মে গায়ন শুনেঙ্গে। আজ কি কলাকার হে অর্চনা উপাধ্যায়।
7: দিস ইজ আকাশবাণী, ওয়েলকাম টু দি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ মিউজিক। ইন টু নাইটস কনসার্ট you are going to listen to a Carnatic vocal by Archana Upadhyaya.
6: Archana Upadhyay ek prasiddh Carnatic shastriya sangeet gayika hain aur Akashvani ki A grade kalakar hain. Aap vidushi Vasant Lakshmi Hebbar aur Dr. V Arvind Hebbar se apna sangeet prashikshan shuru kiya aur thode samay tak aap swargiya Shrimati Ranjani Hebbar se bhi shiksha hasil ki. आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। अर्चना को MS सुबलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
7: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर म्यूजिक ट्रेनिंग इन 2008 अंडर विद्वान वसंत लक्ष्मी हेब्बार एंड डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार। She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Shri Vinay Varanasi across India, Dubai and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Award, first prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 100

0: वन कॉम्पोजिशंस अंडर द दास अर्चने प्रोजेक्ट।
1: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगड़ा, और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय, और मोरसिंग पर हैं बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं, जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है।
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगड़ा, ऑन द मृदंगम बाय सुनाद कृष्णा अमय एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, अ वर्णा इन राग बहुदारी सेट टू आदिताला कंपोज्ड बाय लालगुडी जी जयरामन।

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतीया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतीया, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाई मुत्तुस्वामी दीक्षितर श्री गुरु गुहा विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंग पर बालकृष्ण हसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटिक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mridangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছিলেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। একটু পরেই দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে আশুতোষ মিশ্র। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर चालक रहित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार उन्नत सिग्नल प्रणाली के साथ 3.7 किलोमीटर की डबल डेकर वाली संरचना है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाने, कार्गो निपटान क्षमता को विस्तारित करने और लॉजिस्टिक दक्षता को दुरुस्त करने के लिए तमिलनाडु में बंदरगाह से संबंधी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिबके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिबके को उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
2: मोर केपेबल एंड मोर क्रेडिबल।
1: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।